0: இனி தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தியறிக்கை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूबनगर तक 4 लेन

0: परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। बीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरल में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Mr. Modi will also address the gathering during the programme. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad and at around

0: माँ एक ऐसा शब्द जिसके लेते ही दिल में सुकून भर जाता है। ये वो निस्वार्थ शक्ति है जो जन्म देती है, रक्षा करती है और पालन पोषण करती है, लेकिन बदले में सिर्फ हमारी खुशियाँ चाहती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता और ये बच्चों के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। आज सवेरे के इस अंक में आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ आपके साथ फरहत नाज और आज मेरा साथ दे रही हैं इस मौके पर सरबजीत कौर। नमस्कार सरबजीत।
1: नमस्कार फरहत, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन

0: किया. आई जस्ट लाइक टू एड हियर दैट आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिकर. फरद, दीज लाइन्स सो ब्यूटिफुली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ अ मदर एंड अ चाइल्ड. एंड लिसनर्स, नॉट ओनली टुडे, लेट्स सेलिब्रेट दिस रिलेशनशिप एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस.
1: जी बिल्कुल सरब जी, क्योंकि जो माँ है ना वो हर उम्र में चाहिए होती है, चाहे आप जवानी के उस पड़ाव पर हों या फिर बुढ़ापे के उस पड़ाव में, लेकिन माँ जो है वो हर वक्त हमें चाहिए होती है.
0: Absolutely, very well said.
1: जी बिल्कुल, और फिल्मों में भी हमेशा माँ के किरदार को अहमियत दी गई है, तो क्यों ना फिल्म कुछ कुछ होता है से ये सीन सुनते हैं जहाँ शाहरुख खान माँ के किरदार को बखूबी बयां कर रहे हैं.
2: माँ वो है जो हमको इतना प्यार करती है कि कभी कभी हम खुद उस प्यार को समझ नहीं पाते. माँ वो है जो हमको एहसास दिलाती है कि हम कितने अच्छे हैं, हमसे अच्छा और कोई है ही नहीं. माँ वो है जिसकी खुशी हमारी हंसी से है, जिसका दुख हमारे दुख से है. माँ वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते. माँ सब कुछ है.
1: बिल्कुल माँ सब कुछ है सरबजीत.
0: Yes, and with these words, once again, listeners, a very warm and loving welcome to all our listeners tuned to Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashvani network. Yes, listeners, it's time for our daily news magazine program, Aaj Savere. This is a program of 30 minutes, a program packed with important news, Metro City updates, historical information, and of course, towards the end of the program, we shall together discuss and share with you information about important personalities associated with today's day, that is 10th of May.
1: जी बिल्कुल सरबजीत, लेकिन उससे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों से. सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर. प्रधानमंत्री आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे. वे लगभग दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का वहां पर भी शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे.
0: द फाउंडर ऑफ तमिलनाडु वेत्री काजगम टीवी की से जोसेफ विजय विल बी स्वोन इन टुडे एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. The swearing-in ceremony will be held at Nehru Indoor Stadium at 10 a.m. today. State Governor Vishwanath Arlekar will administer the oath of office to Mr. Vijay. According to party sources, 9 ministers will also be sworn in along with him. Elaborate arrangements have been made for the swearing-in ceremony as a huge crowd is expected to turn up for the event in Chennai. We have more details on this from our correspondent.
3: With a mandate of more than 34%, Vijay, who acted in several box office hits, will become the chief minister. Vijay made the entry as a protagonist to film world through Nalaya Tirpu. Later, he went on to give several blockbusters, including films which had political dialogues. The songs which had Josh Beats is popular among children to the aged ones. TVK, being the single largest party, had to stop with 108 seats, but still Joseph Vijay managed to get the majority with the help of Congress, VCK, left parties and IUML. With the charisma of a hero, Tamil Nadu has seen the heartthrob of the youth who made history on the very first attempt and become the chief minister. Unga Vijay, Naan Varan was the code word which he won the elections. No doubt that the performance of this government, who has a lot of young and new faces, will be assessed by those who gave him the mandate. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
1: और तमिलनाडु के बाद केरलम की बात कर लेते हैं. केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरल प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे. पार्टी ने कहा है कि केरलम के नए मुख्यमंत्री के बारे में अंतिम निर्णय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का होगा. जल्द ही नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी. और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है. उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया. वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे. ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेतृत्व में एनडीए ने 9 अप्रैल को हुए चुनाव में बहुमत हासिल किया है. चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए गए थे.
0: एंड फ्रॉम पॉलिटिक्स फरहत, लेट्स See what the great leaps the country is taking in the area of defense and research. Defense Research and Development Organization, DRDO, has successfully conducted an extensive long-duration test of its actively cooled full-scale scramjet combustor in Hyderabad. Ministry of Defense said that the test achieved a runtime of

0: over 1,200 seconds, surpassing the earlier 700 seconds test held in January this year. The successful test positions India at the forefront of advanced aerospace capabilities and continuously emerging war technologies. It also validates both the combustor design and the capabilities of the state-of-the-art test facility, strengthening India's hypersonic cruise missile development program. Defense Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, industry partners and academia and described the achievement as a solid foundation for the nation's hypersonic cruise missile development program. The ministry said that the combustor is developed by Defence Research and Development Laboratory, DRDL of DRDO, with support from industry partners. It added that the combustor uses an indigenously developed liquid hydrocarbon fuel, advanced thermal barrier coating and modern manufacturing technologies.
1: और सरबजीत अब बात कर लेते हैं संविदा कर्मचारियों से जुड़ी खबर से केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं इससे केंद्रीय मंत्रालयों विभागों स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान करना अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी इसमें समय पर वेतन दिया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान भी है इसके अलावा दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के दो दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के सात दिन में होना अनिवार्य कर दिया गया है
0: And let's now take a look in the world of sports. In boxing, India's under-15 girls delivered commanding performances in the semi-finals at the Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships, with nine boxers advancing to the finals across weight categories in Tashkent. In the 30 to 33 kilograms category, Akshita registered an emphatic win by RSC referee stops contest against Ayzan Marat of Kazakhstan. Anze, 37 kg, continued India's strong run with a convincing 5-0 victory over Sarvinoz Rysklova of Uzbekistan, while Sonia, 40 kg, was secured a dominant 5-0 win against Diana Mendgreva of Kazakhstan. In the 43 kg category, Tanvi clinched a win by RSC against Sezem Nulbuk of Kazakhstan. Hanshika Atri, 46 kg, followed it up with an impressive RSC victory over Yunoi Shion of Korea. Sunena, 58 kg, delivered a strong performance, winning by RSC against Ardak Arzbegan of Kazakhstan. In the 61 kg category, Bhumika secured a win by RSC against Xiong Ying Sheng of Chinese Taipei. Tanvi, 64 kg, registered a hard-fought 4-1 victory over Yasmin Jotnov of Kazakhstan to progress to the finals. With nine finalists confirmed, the Indian under-15 girls team will now look to convert this strong showing into gold medals.
1: और श्रोताओं हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर जहां हम रुख करेंगे महानगरों की खबरों का तो सबसे पहले चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद दिल्ली मुंबई कोलकाता के समाचार हम सुनेंगे तो सरबजीत चेन्नई में क्या है खास
0: Yes, Farhat, around 48,250 hatchlings have been released into the sea by the state forest officials so far this season, which will conclude by month end. At least 74,140 eggs were collected from nests and transferred to hatcheries this time. Tamil Nadu recorded 1,985 Olive Ridley nests across nine coastal hatchery districts. Chennai had the maximum number of nest identification, egg collection and hatchling releases. Chennai also recorded the highest number of turtle deaths this season. The district's jurisdiction extends to Pulkat in the neighbouring Tiruvallur district. And Farhad, what are you having to share with the listeners now?
1: जी दिल्ली में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं CBSE से जुड़ी खबर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने दिल्ली में प्रोजेक्ट मैट के दूसरे चरण की शुरुआत की है ये पहल किशोर विद्यार्थियों के मानसिक भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधी मॉड्यूल सहकर्मी सहायता

0: गतिविधियां और अभिभावक सहभागिता कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। दूसरे चरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 60 से अधिक सीबीएसई स्कूल भी इसमें शामिल हुए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास हीट वेव एक्शन प्लान के अंतर्गत विशेष कूलिंग जोन तैयार किया है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि यहां 70 से 80 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं ठंडे पानी और ORS की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि राहगीरों, पर्यटकों, रिक्शा चालकों और श्रमिकों को गर्मी से राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार केवल व्यवस्था बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि लोगों तक सीधी राहत पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को भीड़भाड़ वाले अन्य इलाकों में ऐसे राहत केंद्र विकसित करने के भी निर्देश दिए हैं।
1: Yes, of course, you know, with summers round the corner, Farhat, we all need to take a lot of care of our health and of course, at all time, remain hydrated. Moving on to news from Bengaluru, Karnataka State Election Commission is likely to announce next week the schedule of elections to the 5 city corporations under the Greater Bengaluru Authority. The State Election Commissioner, G.S. Sangreshi, has informed that the poll dates will be announced following consultations with the officials of the Greater Bengaluru Authority and also considering engagements related to examinations, census work, voter list revision and monsoon conditions. The Supreme Court has directed the Karnataka state government to complete Bengaluru civic body elections before June the 30th. The term of the Bruhat Bengaluru Mahanagar Palike, as it was called earlier, has ended way back in 2020. The civic body since then is administered by a government-appointed administrator. The state government had last year replaced Bruhat Bengaluru Mahanagar Palike with Greater Bengaluru Authority and bifurcated the single municipal corporation into 5 separate corporations.
0: और अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नायक ने कहा है कि राज्य वन विभाग थाने जिला आर्द्रभूमि निगरानी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को चुनौती देगा, जिसमें कथित तौर पर नवी मुंबई और थाने के कई पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को आर्द्रभूमि का दर्जा देने से इनकार किया गया है। इस रिपोर्ट ने पर्यावरणविदों के बीच चिंता पैदा कर दी है और क्योंकि इसमें नवी मुंबई में राजहंसों के आवासों और जल निकायों सहित महत्वपूर्ण स्थलों की आर्द्रभूमि स्थिति पर सवाल उठाया गया है। वहीं भगवत सप्ताह उत्सव के उपलक्ष्य में 9 से 12 मई तक उल्हास नगर के कई हिस्सों में यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू किए गए हैं। थाने पुलिस के अनुसार श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को नियंत्रित करने और जाम से बचने के लिए कई सड़कों पर शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। मलेगा मंदिर, आकाश कॉलोनी रोड और चालिया मंदिर की ओर जाने वाले प्रमुख मार्ग निर्धारित समय के दौरान सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगे और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से जाएगा। पुलिस ने बताया कि एम्बुलेंस, अग्निशमन और पुलिस वाहनों सहित आपातकालीन और आवश्यक सेवा वाहनों को भी इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
1: And now news from Hyderabad. Chief Minister A. Revanth Reddy announced plans to make Hyderabad a traffic-free city. The state government will build underpasses, surface roads and elevated corridors to improve traffic flow. Chief Minister addressed the Parliamentary Standing Committee on Urban Affairs and Housing, presenting the government's plans to make Hyderabad a traffic-free city and rejuvenate the Musi River. Multi-level parking facilities and multi-mode transport systems will be developed across the city. The Chief Minister said that simply widening roads is not enough to manage traffic effectively. To reduce air pollution, electric buses will be added to the city's public transport. Auto rickshaws in the city centre will be converted to electric vehicles for free. The government is also rejuvenating the Musi River to preserve the city's natural beauty and culture. The Parliamentary Standing Committee praised the Chief Minister for the Musi River rejuvenation project. The committee said it is the first project of its kind in India.
0: और सरबजीत, अब कोलकाता का रुख कर लेते हैं। अनुकूल हवा और उच्च आर्द्रता के कारण रविवार तक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है। अलीपुर मौसम विभाग ने झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी और पश्चिमी बर्दवान, बीरभूम और मुर्शिदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। और इसके अलावा उत्तरी बंगाल के मालदा और दक्षिण दिनाजपुर के लिए मध्यम बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पुष्टि की है कि अगले 2 दिनों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। महानगरों की खबरों के बाद अब मौसम का हाल जान लेते हैं सरबजीत। तो सबसे पहले बात राज

0: राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज आसमान साफ रहेगा लेकिन गर्मी वैसे ही बरकरार रहेगी। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहने की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और कोलकाता में हमने आपको बता ही दिया है समाचारों में कि आज बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना वहां पर व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट महसूस होगी, 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: सो फरत, सो इंटरेस्टिंग, आवर कंट्री इज नॉट ओनली डाइवर्स इन इट्स कल्चर बट ऑल्सो इन इट्स वेदर कंडीशंस। कहीं बहुत गर्मी हो रही है और कहीं बारिश की संभावना है। जी, वेल, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस थंडरस्टॉर्म accompanied with lightning. The minimum temperature was 25 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum may go up to 32 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with possibility of rain, thunderstorm or dust storm. The temperatures will hover between minimum of 27 degrees and a maximum of around 38 degrees Celsius.
0: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज है 10 मई 2026। तो सबसे पहले इतिहास में दर्ज 1857 की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी दिन शुरू हुआ था।
1: Yes, Farhat, very rightly said. On May 10th, 1857, sepoys at Meerut began their revolt, igniting a conflict that spread across northern India and would influence Indian politics for decades. The 1857 rebellion, or First War of Indian Independence, was a major large-scale uprising against British East India Company rule that began today in the year 1857 in Meerut and spread across north-central India. And sparked by the use of greased cartridges, it stemmed from deep-rooted political, economic and social grievances. On this day in the year 1872, Victoria Woodhull became the first woman nominated for President of the United States. And on this day in the year 1877, the 19th U.S. President, Rutherford Hayes, got the first telephone installed in the White House.
0: और 1994 की अगर बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला द्वारा प्रिटोरिया में एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की गई। वहीं 1999 में पेनिसिलिन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर एडवर्ड इब्राहिम की आज ही के दिन मृत्यु हुई।
1: And 1893, on this day, the Imperial Institute building was officially opened by Queen Victoria. And on this day, in the year 1901, Sir Jagdish Chandra Bose, the Indian scientist, in the hall of the Royal Society, London, which was packed with eminent scientists, proved that plants and animals have similar touch sense.
0: और सन 2006 में अगर बात की जाए तो नोबेल पुरस्कार सम्मानित ऑस्कर एरियोस ने दोबारा क्रिस्टोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी।
1: On this day in the year 1975, the first home video cassette recorder, the Betamax, began sales in Japan. The format made by Sony used one-hour tapes, but a competing system was introduced by JVC the following year called Video Home System, capable of two-hour recording.
0: और अब आइए इतिहास के बाद हम याद कर लेते हैं कुछ जानी मानी शख्सियतों को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पंकज मलिक की, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। बांग्ला संगीत और फिल्मों में सफलता के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी अपनी कामयाबी का परचम लहराने वाले शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ रहे। इनका पूरा नाम था पंकज कुमार मलिक और ये ऐसे संगीतकार और गायक थे जिनकी आवाज के जादू ने आज भी उनके लाखों प्रशंसकों को बांध रखा है। जाति प्रथा की समस्या के खिलाफ संदेश देने वाली फिल्म डॉक्टर में पंकज मलिक ने कई गाने खुद गाए जो काफी हिट भी हुए। पंकज मलिक की अपनी विशिष्ट गायन शैली थी जिसकी बदौलत उन्होंने हजारों लोगों को अपना प्रशंसक बनाया। उन्हें हिंदी फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

0: Fred received an honorary Academy Award, a BAFTA Award, 3 Emmy Awards, 2 Golden Globe Awards, and a Grammy Award.
1: और श्रोताओं, अब हम जो अगली शख्सियत के बारे में बात करेंगे, तो क्यों ना सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं, फिर उनके बारे में बात करते हैं।

तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जी हाँ, ये फिल्म है अर्थ और इसके बोल लिखे थे कैफी आजमी ने, तो हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ये उर्दू अदब का वो सितारा रहे जिसने इश्क, इंकलाब और इंसानियत तीनों को लफ्ज दिए। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने नज्म लिखी और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत शायरी को इन्होंने जन्म दिया। और कैफी आजमी साहब को पहला ब्रेक मिला था 1959 में फिल्म कागज के फूल में। अबरार अलवी ने उन्हें गुरुदत्त से मिलवाया और गुरुदत्त से बहुत जल्दी उनकी अच्छी बन गई थी। कैफी आजमी साहब कहते थे कि उस जमाने में फिल्मों में गाने लिखना एक अजीब सी चीज़ थी और आमतौर पर पहली ट्यून बनती थी और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन उन्होंने जब कागज़ के फूल में जो गीत लिखा वो तो मशहूर हो गया, लेकिन फिल्म जो थी वो ज़्यादा नहीं चल पाई। लेकिन हम आपको इस फिल्म से ये प्यारा सा गीत सुनाते हैं।

लेकिन इसके बाद भी कैफी आजमी ने हिम्मत नहीं हारी और बहुत सारी फिल्मों का उन्होंने गीत लिखे और इसके अलावा कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, ये गाना इन्होंने जब लिखा तो फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। तो फिल्म हकीकत से सुन लेते हैं ये प्यारा संगीत।

0: और इसके बाद कैफी साहब का कामयाब का दौर शुरू हो गया। चेतन आनंद साहब की तमाम फिल्में वो लिखने लगे जिसके गाने भी काफ़ी लोकप्रिय हुए और उनका कहना रहा कि जो वो मेरे ना रहे मैं भी कब किसी का रहा, बिछड़ के उनसे सलीका ना जिंदगी का रहा।
1: अब तुम्हारे हवाले वतन
2: और फरत एज इज यू नो इन एवरी शो आपकी आवाज में आज भी बहुत ताजगी। आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड योर मॉर्निंग कप ऑफ टी।
0: जी बिल्कुल, हमेशा जो है वो कहते हैं ना कि वो खुशी का जो पल है वो याद करते रहना चाहिए, तभी आपकी जो आवाज है उसमें भी खुशियां महसूस होती रहेंगी।
2: एब्सोल्युटली। एंड यू नो व्हाई आई मेड दिस स्पेशल रेफरेंस टू योर मॉर्निंग कप ऑफ टी, बिकॉज टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर थॉमस लिप्टन, द ओनर ऑफ द ब्रांड ऑफ लिप्टन टीज। एंड बिफोर ही मेड इट बिग इन life, he did a variety of jobs. Lipton worked for a tobacco plantation in Virginia. He worked as an accountant and bookkeeper at a rice plantation in South Carolina.

अंत में चलते चलते भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा को याद कर लेते हैं। आज संतूर की लोकप्रियता का सर्वाधिक श्रेय शिव कुमार शर्मा को ही जाता है।

0: तो बहुत ही मधुर आवाज संतूर की। और इसके साथ ही वक्त हो चला है आपने श्रोताओं से अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।
1: लिसनर्स स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ ग्रेट डे।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि

0: इन राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियाद आदि ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण

0: समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
4: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
5: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाड और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाड में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाड और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज

0: वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalises 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. More from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Center, the Prime Minister will address the BJP

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: तेरे गानतिल अड़ते
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत

0: भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं और वे इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: पहली वर्षगांठ मनाई है, और कल सुबह 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं। मैं आज आपके बीच बंगलुरु की इस धरती से माता अन्नम्मा उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
1: बाद में प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में 9400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में भी शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय अब से कुछ देर में चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
3: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। श्री रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने

0: And clashes between Iranian and US forces in and around the Strait of Hormuz. US forces have reportedly attacked several Iranian ships and oil tankers. Meanwhile, US President Donald Trump said he expects to receive a message from Iran as uncertainty continues over the progress of nuclear negotiations. The US has proposed to increase the minimum wages paid to hire an employee under the H-1B visa program by 30% over the previously fixed limits, a move the administration claims will help prevent foreigners from undercutting salary of US nationals. The new rule seeks to increase the minimum wages for four categories, from the entry level to the most experienced, contending that the existing wage levels were fixed 20 years ago and fail to adequately protect US workers. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall today in parts of Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Places over Chhattisgarh and Gangetic West Bengal are expected to experience thunder squall today. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Rajasthan Royals by 77 runs. In another match, Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians will clash at Shahid Veer Narayan Singh International Stadium in Raipur. The match will start at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. Akashwani se Vishu Darpan ke saath, main Lavleen Nigam. रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कंबस्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण त्रिनिदाद में कृषि प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया. कहा यह भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत लघु और मध्यम उद्यमों तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत करेगा. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंता वायरस संक्रमित सभी क्रूज जहाज यात्रियों की 42 दिन तक निगरानी करने की सलाह दी. अमेरिका ने H-1B वीजा पर काम करने वालों के लिए न्यूनतम वेतन में 30% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा. और भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता. अब समाचार विस्तार से. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कम्स्टर का सफल परीक्षण पर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है. एक रिपोर्ट.
2: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ. ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है. सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है. इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी. कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है. इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है. अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाड और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाड में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया. डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाड और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूती प्रदान करेगा और कृषि क्षेत्र को नई गति देगा. उन्होंने ट्रिनिडाड टोबैगो के पेनाल में एक स्थायी कृत्रिम अंग केंद्र का भी उद्घाटन किया. डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह केंद्र देश और व्यापक कैरिकॉम क्षेत्र के लिए उपहार है. उन्होंने दत्तात्रेय मंदिर में दोनों देशों के लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना की और भारत तथा ट्रिनिडाड टोबैगो के बीच संबंध निरंतर सुदृढ़ होने की कामना की. जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स ने कहा है कि ईरान युद्ध के कारण अमेरिका के साथ मतभेद सामने आने के बाद भी यूरोप नाटो गठबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करना चाहता है. स्टॉकहोम में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिटसन के साथ श्री मर्ट्स ने भविष्य में इस गठबंधन को सक्रिय रखने की बात कही. उन्होंने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड ने गठबंधन के यूरोपीय स्तंभ को मजबूत किया है. श्री मर्ट्स ने कहा कि यूरोप और अमेरिका के बीच मतभेद अब भी मौजूद हैं, लेकिन दोनों पक्षों का एक ही रणनीतिक उद्देश्य है, ईरान के साथ संघर्ष को समाप्त करना और यह सुनिश्चित

0: करना कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में सक्षम ना हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के यूरोपीय सदस्यों के बीच तनाव ने गठबंधन के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों ने फरवरी के अंत में शुरू हुए अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। ईरान की नौसेना ने ईरानी तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों पर किसी भी हमले के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों और जहाजों पर जोरदार हमले की चेतावनी दी है। होर्मुज, जलडमरू, मध्य और आसपास के इलाकों में ईरानी और अमरीकी सेनाओं के बीच हाल की छिटपुट झड़पों के बाद यह बयान आया है। 28 फरवरी से ईरान के होर्मुज, जलडमरू, मध्य पर नियंत्रण के लिए इसराइल और अमरीका से संबंधित जहाजों की आवाजाही इस जलमार्ग से रुकी हुई है। अमरीका ने भी इस क्षेत्र की नौसैनिक नाकाबंदी कर ईरानी जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर ब्रिटेन होर्मुज, जलडमरू, मध्य में जहाजों की सुरक्षा के लिए युद्धपोत HMS ड्रैगन तैनात कर रहा है। इससे पहले ब्रिटेन ने ईरान युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद साइप्रस की सहायता के लिए पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत तैनात किया था। ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस युद्धपोत की तैनाती का उद्देश्य होर्मुज, जलडमरू, मध्य की सुरक्षा के लिए बहुराष्ट्रीय गठबंधन में भाग लेना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले खराब रूस संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी बातचीत के लिए उनके पसंदीदा नेता हैं जर्मनी के पूर्व गेरहार्ड श्रोडर। श्री पुतिन ने कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देशों के बीच रूस और वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंता वायरस संक्रमण की आशंका वाले MV होंडियस क्रूज पर सवार सभी लोगों को 42 दिन तक निगरानी में रखने को कहा है। संगठन के वैश्विक महामारी रोकथाम निदेशक डॉ. वैन किरखोव ने कहा कि वर्तमान में किसी भी यात्री या चालक दल के सदस्य में लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने 42 दिन के दौरान जहाज से उतरने वाले सभी व्यक्तियों की निगरानी की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि आम जनता और कैनरी द्वीप समूह के निवासियों के लिए जोखिम कम है, जहां MV होंडुरस क्रूज आज पहुंच रहा है। इससे पहले MV होंडुरस क्रूज पर हंता वायरस के संक्रमण की सूचना मिली थी, जो अर्जेंटीना से पश्चिमी अफ्रीकी तट स्थित केप वर्डे जा रहा था। अमेरिका ने H-1B वीजा कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पहले से तय न्यूनतम वेतन में 30% वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। प्रशासन ने कहा है कि कम वेतन पर विदेशी कर्मी उपलब्ध न होने से अमेरिकी नागरिकों के वेतन में कटौती पर रोक लगेगी।
1: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेती हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता है। शंघाई में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत की भारतीय टीम ने मेजबान चीन को रोमांचक मुकाबले में शूट ऑफ में हराया। भारत ने पहला सेट जीता, लेकिन चीन ने वापसी करते हुए मुकाबला बराबर कर लिया। निर्धारित 4 सेट के बाद स्कोर बराबर रहने के कारण शूट ऑफ कराया गया। भारतीय तिकड़ी ने निर्णायक क्षणों में संयम बनाते हुए जीत दर्ज की। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। इससे पहले साहिल जाधव ने पुरुष कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में

0: ஒலித்த பாடலோடு நிறைவு பெற்றது சுகமான ராகங்கள். தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. तमिलनाडु में तमिलग वित्री कड़गम टीवीके पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली. 9 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई. 120 विधायकों के समर्थन के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था. राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को कहा है. शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं. असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है. बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है. उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है. श्री रंगासामी 13 मई को पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं. वे आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे. श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में 9400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. गुजरात का सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी गौरवमयी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे. सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है. धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है. इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है. केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है. इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी. सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए. आज तिरुपति में संवाददाताओं से उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया. मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं. मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है. छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आज आंधी आने की संभावना है. विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के उपमालयी क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की संभावना है. आज गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का भी अनुमान है. ईरान की नौसेना ने ईरानी तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों पर किसी भी हमले के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों और जहाजों पर जोरदार हमले की चेतावनी दी है. हॉर्मुज जलडमरू मध्य और आसपास के इलाकों में ईरानी और अमरीकी सेनाओं के बीच हाल की छिटपुट झड़पों के बाद ये बयान आया है. ताशकंद में

0: उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: आंखों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। तमिलगावेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru this morning. He also inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया. उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन

0: conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being.
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है
0: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
1: भारत की जनता कह रही है कि हमें पीड़ चाहिए, हमें गेम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए साथियों आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है
0: Attacking Congress, the Prime Minister accused the party of opposing the Nari Vandan Sanshodhan Bill in Parliament.
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी बड़ा खेल चला करता था बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया लेकिन साथियों कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया
0: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. State-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care, not-for-profit hospital. The founder of Tamil Nag Vetri Karagam, TVK, actor-turned-politician, C. Joseph Vijay, has been sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Governor Rajendra Vishwanath Adlekar administered him the oath of office and secrecy in a swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. 9 ministers also took oath along with Mr. Vijay. Congress leader Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were also present on the occasion.

0: पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் 9 மந்திரியும் நேபி சபத் லீ ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு ஷாமில் ஹே. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर

0: को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरकुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि NDA का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
1: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और NDA का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। NDA सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति

0: समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी विंस से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के GST धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ஆகாஷ்வாணி நேரம் 2:30.

0: திரைகாணம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया. इस समय प्रधानमंत्री वहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. आइए सुनते हैं उनका संबोधन.
2: लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें. जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें. इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी.
1: प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे. वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे. इस पार्क को काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है. प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के विशेष इलाज वाले सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है. श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया. उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया. इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की प्रशंसा की. प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है.

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दसनायके ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई सरकारी कार्यक्रमों को मंजूरी भी दी है। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़े सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुल 8 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें 6 नए मंत्री शामिल किए गए और वर्तमान में सोमेंद्र तोमर और अजित पाल को कद बढ़ाकर उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ दिलाई गई है। नए मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। और खेलों में शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोद शामिल थी। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है।
1: The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. Prime Minister Modi laid the foundation stone and inaugurated multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister inaugurated the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit hospital. The founder of Tamilaga Vetri Kadagam TVK actor turned politician C. Joseph Vijay has been sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Governor Rajendra Vishwanath

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: Zakir Hussain Delhi College Evening, affiliated with the University of Delhi, has invited online applications for the permanent post of Director of Physical Education under Academic Pay Level 10. The vacancy is for the unreserved category with one post available. Candidates already employed in government or institutional service must apply through proper channel. Eligibility conditions, educational qualifications and age criteria will be as per Delhi University norms. The application fee is 1000 rupees for general category and 800 rupees for women applicants. Interested candidates can apply online through the college website at www.zhdce.ac.in. The last date for submission of applications is 21 days from the date of publication in the Employment News. Kindly do refer to the website, that is at www.zhdce.ac.in. Indian Institute of Science Education and Research Bhopal has announced recruitment for several Group A non-teaching positions. The vacancies include Principal Technical Officer Grade 2, ERP, Senior Technical Officer T-Lab, Executive Engineer Civil Electrical and Assistant Executive Engineer Civil Electrical. IISER Bhopal, an institute of national importance under the Ministry of Education, is inviting applications from qualified and experienced Indian citizens. Online applications are open till 10th May 2026, while hard copies of applications must reach the institute by 18th May 2026. Detailed eligibility conditions, qualifications and application procedures available on the recruitment portal and official institute website, that is at www.iiserb.ac.in. RailTel Corporation of India Limited, a Navratna public sector undertaking under the Ministry of Railways, has invited applications for the contractual post of consultant medical at its corporate office in New Delhi. Last date for submission of applications is 16th May 2026. Interested candidates can check the detailed advertisement and application forms in the current job opening section of the company's career page. Kindly do visit the website, that is at www.railtel.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में संविदा आधार पर युवा पेशेवरों को कानूनी अनुसंधान सलाहकार के रूप में सूचीबद्ध किया जाना है। इसके लिए पात्रता, योग्यता एवं भुगतान के समस्त मानदंडों के विषय में आप प्राप्त कर सकते हैं जानकारी इस वेबसाइट पर www.nhrc.nic.in। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली में वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर सामान्य केंद्रीय सेवा समूह का राजपत्रित अनानुसचिवीय पद के वेतन मैट्रिक स्तर 13 में भरे जाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। सामान्य शर्तें, पात्रता मानदंड, आवेदन का प्रपत्र और अन्य विवरण आप देख सकते हैं विभाग की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.jalshakti-dowr.gov.in। आवेदन की अग्रिम प्रति इस ईमेल पर अग्रेषित की जा सकती है usadmn-mowr@nic.in अथवा admn-mowr@nic.in। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान में इन पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं और आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद है सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल, एक रिक्ति उपलब्ध है। समेकित वेतन रहेगा 90,000 रूपए प्रतिमाह। सहायक अभियंता सिविल दो पद उपलब्ध हैं। आयु सीमा है अधिकतम 35 वर्ष, जबकि वेतन रहेगा

0: 50,000 रुपए प्रति माह समेकित। पात्रता मानदंड, ऑनलाइन आवेदन और अन्य विवरणों के लिए देखिए ये वेबसाइट rgipt.ac.in/en/page/nts-contractual-position। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट में प्रोफेसर सह प्राचार्य का एक पद उपलब्ध है। विस्तृत विज्ञापन और जानकारी के लिए आप देख सकते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट की आधिकारिक वेबसाइट www.aimsrajkot.edu.in। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान सचिव पद पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है। FDDI राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जो फुटवियर और चमड़े के उत्पादों के डिजाइन और विकास से संबंधित सभी विषयों में शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और विकास करने तथा इससे संबंधित या इससे जुड़े मामलों के लिए काम करता है। सभी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन अद्यतन वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र सतर्कता मंजूरी और काडर मंजूरी प्रमाण पत्र के साथ उचित माध्यम से पते पर भेज सकते हैं। अनुसंधान अधिकारी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कैबिन संख्या US 34 प्रथम मंजिल वाणिज्य भवन नई दिल्ली 110010 किसी भी स्पष्टीकरण के लिए इस ईमेल और फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल है neeraj.ks@nic.in जबकि टेलीफोन नंबर है 0112338895। फोन नंबर एक बार फिर नोट कीजिए 0112338895। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और आज उसका दिन है जिससे हम सब का दिन है, जीवन है, और वो हमारे जीवन की आधार है, हमारी सृजना है, हमारी माँ है। आज पूरी दुनिया मदर्स डे मना रही है और ये दिन समर्पित है उस शक्ति के लिए, उस एहसास और संवेदना कहें, भावना कहें, या भावना का समंदर उसी के लिए है और उसी को धन्यवाद देने के लिए है। तो जब आज मदर्स डे की बात आती है तो शायर मुनव्वर राणा का कि ये कुछ चुनिंदा पंक्तियाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर शेयर करनी चाहिए कि लबों पर उसके कभी बददुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। दुनिया सौदेबाजी के उसूलों पर चलती है पर माँ की ममता में कभी मिलावट नहीं होती। और आज के इस कार्यक्रम में हम मदर्स डे पर डेडलाइन में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके अलावा अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनके पास खास है, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार भी देंगे आपको, और खेल के मैदान की हलचल भी रहेगी, आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नज़र। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। आज के इस अंक में मैं हूँ जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: हेलो जागृति, हेलो एंड वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू अ न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 FM गोल्ड। I'm Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is, of course, my co-host Jagriti Sharma. And well, at the outset, I'd like to wish all our listeners a very happy Mother's Day. And we'll talk about mothers

0: in a Dateline section of the program. But Jagriti, he's known as the father of motivation. Now let's talk about three of his key teachings. Firstly, if you change the way you look at things, the things you look at change. Secondly, he taught people to let go of the need for vengeance, not for the sake of others, but to achieve internal freedom. And thirdly, he urged people to stop overthinking, to trust the intuition, and to break free from self-imposed limitations. Yes, we are talking about Dr. Wayne Dyer, the great American self-help author and motivational speaker. And he also celebrates his birthday today, so we will also talk about him later in the program. But first, we begin with the news headlines first.
1: Ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व युवा सशक्तिकरण और आत्मसम्मोहन के माध्यम से एक विकसित भारत के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया
0: सी जोसेफ विजय टेक्स ओथ एज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु अलोंग विद 9 मिनिस्टर्स
1: हिमंता बिस्वा शर्मा असम में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए
0: Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case.
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष समाप्ति के करीब हो सकता है.
0: And in archery world cup, Indian women's recurve team clinches gold defeating host China in a shoot-off in Shanghai. Yes, and now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Mother's Day and World Lupus. Today's show is filled with love, emotions, laughter, and lots of gratitude because today the world is celebrating Mother's Day, isn't it, Jagriti?
1: बिल्कुल, हमारे दिन की शुरुआत माँ से होती है और कहें कि जब हम सोने जा रहे होते हैं तब भी हमारी ज़रूरतों का ख्याल माँ ही रखती है और अभिषेक ये भी ख़ास बात है कि हमें अपनी माँ की जो इम्पोर्टेंस है वो तब ज़्यादा समझ में आती है जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं
0: Absolutely.
1: इससे पहले हमें लगता है कि माँ बेवजह परेशान होती है पता नहीं क्यों चिड़चिड़ाती है लेकिन उसके जो एहसास हैं या उसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं हम जिम्मेदार जब बन जाते हैं तब समझ आती है और मुनव्वर राणा भी ये कहते हैं कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है जी हाँ आज पूरी दुनिया मदर्स डे मना रही है और इसलिए मना रही है कि माँओं को और माँ जैसी दूसरी महिलाओं जो हमें बिना शर्त प्यार करती हैं हमारे लिए त्याग करती हैं और जो हमें सहयोग उनसे मिलता है उसका सम्मान किया जा सके और सच कहें तो हमारी माएँ हमारे लिए जो कुछ भी करती हैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए एक दिन कभी भी काफ़ी नहीं होता स्कूल से लेकर अगर हमें स्कूल के लिए जगाना हो या जब हम बीमार होते हैं तब रात भर हमारे लिए जागना हो माएँ असल में पूरे समय हमारे लिए सुपर हीरो बन जाती हैं

0: बदलती, जब भी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आती है तो सबसे पहले हम जिसे फोन करते हैं या फिर हम जिसे याद करते हैं वो अक्सर हमारी माँ होती है। आई थिंक आप इससे एग्री करते हैं।
1: एब्सोल्युटली।
0: और चाहे अगर आपकी चाबियां खो जाएं या आपकी तबीयत खराब हो जाए या फिर ऐसे जो रोजमर्रा की जिंदगी के काम हैं, उन छोटे से बड़े हर काम में आपका जो ख्याल रखती है और आपको जो याद आती है वो माँ ही होती है।
1: एग्जैक्टली। एंड टुडेज शो इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग दोज सुपर हीरोज विदाउट केप्स।

0: माँ भावना है, संवेदना है, एहसास है और इसी एहसास से हम सब जुड़े हुए हैं और आज रुककर इसी एहसास को, भले वो सरल है लेकिन बेहद शक्तिशाली है, और उसी माँ को आज का दिन एक मौका देता है कि हम उन्हें कहें धन्यवाद माँ।
1: Yes, and not just with gifts, but with time, love, respect and appreciation, because honestly, mothers deserve to feel celebrated every single day.
0: तो इससे पहले कि हम बात खत्म करें, आज के लिए आपके लिए एक छोटी सी आपको याद दिला दें कि सोशल मीडिया पर सिर्फ मदर्स डे की स्टोरी ही पोस्ट ना करें, व्हाट्सएप पर स्टेटस ही ना लगाएं, बल्कि अपनी माँ के साथ कुछ अच्छा समय भी बिताएं।
1: Absolutely. So to conclude our discussion on Mother's Day, Jagriti, as we celebrate Mother's Day 2026 today, let's remember that motherhood is not only about giving birth, it's about care, compassion, guidance and unconditional love. And to every mother and maternal figure listening, thank you for your patience, strength and endless love.
0: तुम्हारी वजह से ये दुनिया और भी ज़्यादा रोशन है। जाओ अपनी माँ को गले लगाओ, उन्हें फ़ोन करो, उनके साथ समय बिताओ या बस उन्हें ये बताओ कि वे तुम्हारे लिए कितनी ख़ास हैं, कितनी मायने रखती हैं, क्योंकि दीवारों को घर बनाती है माँ, बिखरे रिश्तों को सजाती है माँ, खुद गीले में सो जाती है अक्सर पर हमें सूखे में सुलाती है माँ, भले ही हम कितनी ही दूर निकल जाएं, हर मोड़ पर लौट कर आने की वजह होती है माँ।
2: माँ वो है जो हमको इतना प्यार करती है कि कभी कभी हम खुद उस प्यार को समझ नहीं पाते। माँ वो है जो हमको एहसास दिलाती है कि हम कितने अच्छे हैं, हमसे अच्छा और कोई है ही नहीं। माँ वो है जिसकी खुशी हमारी हंसी से है, जिसका दुख हमारे दुख से है। माँ वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। माँ माँ सब कुछ है।

0: Yes, and now we move on to our second topic in a Dateline section, that is the World Lupus Day. And very important day that has been observed across the world today, Jagriti, is the World Lupus Day.
1: बिल्कुल, और आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों ने सुना होगा लेकिन वे इसे पूरी तरह से समझते नहीं हैं. ये है ल्यूपस. इसे अक्सर अदृश्य बीमारी कहा जाता है क्योंकि इसके कई लक्षण असल में दिखाई ही नहीं देते.
0: Lupus is a chronic autoimmune disease, which means the body's immune system mistakenly attacks its own healthy tissues and organs.
1: और ये शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकता है, उसमें त्वचा, जोड़ों को, किडनी, यहाँ तक कि दिल और फेफड़ों को भी ये प्रभावित कर सकता है. और इसमें मुश्किल बात क्या है, लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं.
0: Yes, and some people experience extreme fatigue, joint pain, skin rashes, fever or hair loss, while others may struggle silently because their symptoms aren't obvious to the world.
1: और इसमें जागरूकता इतनी ज्यादा मायने रखती है. ल्यूपस के कई मरीजों से अक्सर कहा जाता है

0: आप तो बीमार नहीं दिखते।
1: Yes, and comments like that can be really hurtful. World Lupus Day is not just about information, it's also about empathy, support and understanding.
0: समय के साथ लोगों को अपने परिवार, दोस्तों और साथियों से कटाव महसूस हो सकता है, जिसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। ल्यूपस के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ाकर हम ज्यादा मददगार रिश्तों को बढ़ावा दे सकते हैं।
1: Yes, and finding and strengthening connections with people who understand, such as others living with lupus, can play a vital role in reducing isolation and help individuals with lupus feel seen, supported, and less alone.
0: इस वर्ष का विषय है ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं, क्योंकि अक्सर ल्यूपस अनदेखा रह जाता है और इसके लक्षणों को गलत समझा जाता है और इसके प्रभाव को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
1: And millions of people worldwide are living with lupus, and many cases still go undiagnosed for years, which is why doctors and health organizations are pushing for earlier diagnosis, better treatment options, and more medical research.
0: बिल्कुल, और हालांकि अभी ल्यूपस का कोई पूरी तरह से इलाज मौजूद नहीं है, फिर भी समय पर इलाज और सही देखभाल की मदद से लोग इस स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं।
1: So today let's do one small thing, educate ourselves. If someone says they're struggling, believe them. Sometimes the strongest battles are the ones we cannot see.
0: और अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि क्या कुछ खास है उनके पास।
1: The Minister of Education will organize Bharatiya Bhasha Summer Camp 2026 in all schools across the country during summer vacations. And in a social media post, the ministry said that the week-long camp will provide students an engaging opportunity to learn basic communication skills in various Indian languages through interactive activities focused on self-introduction, vocabulary building, real-life conversations and cultural appreciation. The ministry added that this year the initiative also introduces Indian Sign Language as a special highlight, reinforcing the vision of inclusive and equitable education envisioned in the National Education Policy 2020. And the initiative was launched by Union Minister for Education Dharmendra Pradhan last year.
0: और अब चलते हैं सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के बारे में लेते हैं जानकारी, जहां प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। सोमनाथ के इतिहास में पहली बार पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से किया जाएगा। और जानते हैं हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में।

0: प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व
1: Day Konkan Fruit Fiesta 2026 will be held at Rotary High School grounds in Nevelim from 15 to 17 May. Organized by the Agricos Alumni Association with support from Our Lady of Rotary Church, the event will bring together government agencies, farmers, self-help groups and entrepreneurs from Goa, Maharashtra and Karnataka. The festival aims to promote local fruits, especially mangoes and other produce, which have seen a record harvest this year. A fresh fruit competition will be held on 14th May. It is open to all, with no entry fee. Winners will receive cash prizes and certificates on 17th May. The festival will be inaugurated on 15th May and will also feature a range of entertainment activities. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashvani News, Padji.
2: और श्रोताओं, आपको अभी हम रिपोर्ट सुना नहीं पाए, हम दोबारा से लिए चलते हैं आपको सोमनाथ, जहां पर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के उपलक्ष्य में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में हर्षोल्लास का वातावरण है। सोमनाथ के इतिहास में पहली बार सोमनाथ मंदिर जो पुनर्निर्मित है, इसके शिखर का कुंभाभिषेक 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से किया जाएगा। आइए सुनते हैं।
0: प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व भक्ति और अस्मिता का प्रतीक बन गया है। पिछले दो दशकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सोमनाथ मंदिर की विकास यात्रा स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुकी है, जिससे भक्ति और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिला है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कल आयोजित होने वाली ध्वजा पूजा और महापूजा के दौरान भक्ति

0: में वातावरण बनेगा। वहीं भारतीय वायुसेना द्वारा प्रभास पाटन की धरती पर रोमांचक और दिल धड़काने वाले हवाई करतब भी प्रस्तुत किए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई निरीक्षण तथा एयर शो का रिहर्सल किया गया, जिसके चलते आकाश में रोमांचक दृश्य देखने को मिले। सोमनाथ मंदिर के शिखर पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से आज पुष्प वर्षा भी की गई। इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव के जय घोष के साथ भक्ति में लीन दिखाई दिए। पर्व के दौरान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा, समुद्र दर्शन पथ, मारुति हाट तथा लाइव एंड साउंड शो भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। परिक्रमा के लिए मयूर सोलंकी, आकाशवाणी सोमनाथ।
1: In a major push to strengthen the startup ecosystem in Jammu and Kashmir, the Greenovator Incubation Foundation, GIF, at the National Institute of Technology, Srinagar NIT, awarded ignition grants to 10 emerging startups under Cohort 2.0 during the Ignition Grant Felicitation Ceremony 2026, held recently at the NIT Srinagar. We have a report.
2: In his message, Director, National Institute of Technology, Srinagar, Professor Binod Kumar Kanojia said that such initiatives show the institute's commitment to promoting innovation and entrepreneurship among youth. He said that incubation support along with financial help allows young innovators to turn their ideas into meaningful solutions for society. Principal Investigator of Greenovator Incubation Foundation, Dr. Saad Parvez, said there's a need to build a strong culture of innovation in academic institutions. He noted that incubation centers help young entrepreneurs and stressed the importance of linking research, innovation and entrepreneurship for economic growth. Talking to Parikrama, Dr. Parvez said,
3: जो आइडिया जनरेटर्स हैं, जिनके पास बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग आइडियाज हैं, उन आइडिया जनरेटर्स को हम स्टार्टअप का एक रास्ता दिखाएं और वी हैव टेकन देम एज स्टार्टअप एट GIF एनआईटी श्रीनगर। इनकी जर्नी शुरू हो गई है। इस जनरली हम इसको जर्नी फ्रॉम माइंड टू मार्केट कहते हैं, बिकॉज दे हैव दोज आइडियाज। इनके अपने आइडियाज हैं, वो आइडियाज जिनमें हमको बिजनेस का एक स्कोप लगता है। डेवलप दोज आइडियाज, बेसिकली ITBI में हम जो आइडियाज डेवलप करते हैं अंडर दिस स्कीम, वो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड है। तो इनके पास छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज हैं जो कल सक्सेसफुली एक प्रोडक्ट की शेप में मार्केट में आएंगी, और वी विल लुक दैट दिस न्यू प्रोडक्ट्स कॉज सम डिसरप्शन इन द मार्केट। तो इस डिसरप्शन से एक बिजनेस क्रिएट होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और ये पर्पस है हमारा इन स्टार्टअप को सपोर्ट करने का।
2: डॉक्टर साद परवेज फॉर द टॉक अबाउट द यूनिक इनिशिएटिव।
3: हमारी नेशन में आजकल जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बहुत से इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं, तो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट, हमारा भी ये एक रोल बनता है कि हम कैसे इन स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक फर्दर डेवलप करें, जो इनोवेटर्स हैं, आइडिया जनरेट हैं, उनको सपोर्ट करें ताकि दे बिकम द बीकन ऑफ बिजनेस जॉब सीकर्स। वी वांट टू मेक पीपल जॉब क्रिएटर्स एंड जॉब गिवर्स। तो ये हमारा पर्पस है।
2: ग्रीनोवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन एट NIT वाज एस्टैब्लिशड इन 2022-23 एज अ सेक्शन 8 कंपनी विद द एम ऑफ फॉस्टरिंग एन इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी इन द रीजन। इट इज सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द ITBI निधि स्कीम, विद डॉक्टर साद परवेज सर्विंग एज प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड प्रोफेसर राकेश सहगल एज co-principal investigator. Parikrama, Tariq Rather, Akashwani News, Srinagar.
4: और अब खेल के मैदान से जीत की खबर। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मुहूर्त शामिल थीं।
1: Yes, in an IPL cricket, Lucknow Super Giants were 146 for 5 in 14 overs against Chennai Super Kings at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai. When reports last came in earlier, Chennai Super Kings won the toss and opted to bowl. In another match of the day, Royal Challengers Bengaluru will face Mumbai Indians in Raipur, and the match is scheduled to begin at 7:30 p.m.
4: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
5: In today's episode, we commemorate the anniversary of the First War of Indian Independence that was sparked on the 10th of May, 1857. The War of Independence was fed by resentments born of diverse perceptions, including the disturbing of the social fabric, harsh land taxes, and crude treatment of Indian kings, queens, and princes.
6: In May 1857, 85 sepoys of the 3rd Cavalry Regiment, on their refusal to use the greased cartridges, were court-martialed and sentenced to long terms of imprisonment. On the 10th of May, the sepoys shot their officers, released their fellow sepoys, and headed towards Delhi. After the outbreak of the

पुण्यतिथि है। उन्होंने कई फिल्मों में शानदार गीत लिखे हैं और हीर रांझा जो 1970 में आई थी, कैफी साहब ने एक इसमें इतिहास कायम किया। उन्होंने पूरी फिल्म शायरी में लिखी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। उनकी फिल्म टूटे खिलौने के गाने भी उन्होंने ही लिखे हैं। आइए एक गीत उनका हम सुनते हैं।

0: Yes, and we also remembering Bono, who was born on this day in 1960. He is the Irish lead singer, songwriter and musician for the rock band U2, which he fronted since 1976. Known for his powerful vocals, emotional performances and sunglasses clad style, he's also a globally recognized humanitarian activist and entrepreneur.
1: पारिवारिक मूल्यों की फिल्मों के लिए लोकप्रिय राजश्री प्रोडक्शंस के संस्थापक ताराचंद बड़जात्या की आज जयंती है. फिल्म निर्माता ताराचंद ने 1960 से 1980 के दशक तक पारिवारिक मूल्यों और संस्कृति पर आधारित कई सुपरहिट हिंदी फिल्मों का निर्माण किया जो अपनी सादगी और पारिवारिक कहानियों के लिए जानी जाती हैं. आइए सुनते हैं गीत गाता चल, जो उन्होंने निर्माण किया फिल्म से एक गाना.

0: தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है. उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है.
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है. पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है. पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं. ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं. श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी. प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई. प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है. श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया. तमिलगु वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है. राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा. नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की. नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया. साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधन

0: की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में एक विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी नेरम 6:05।
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை FM கோல்டு 100.1.

0: Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद राजेश और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फ़ोन करने वाले श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
0: वार्म वेलकम स्नेहा।
2: थैंक यू।
1: पहले हेडलाइंस के साथ राजेश।
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज द नीड ऑफ द आवर इज रिस्ट्रेंड यूज ऑफ फ्यूल अमिड वेस्ट एशिया क्राइसिस। इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस लॉग वीकली गेन्स। And domestic investors to focus on economic data, corporate earnings and geopolitical developments for cues next week.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया संकट की वजह से ईंधन की किफायत जरूरी। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की साप्ताहिक कीमतों में बढ़त और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की आमदनी और भू राजनीतिक घटनाओं पर।
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Here's the first headline story. Prime Minister Narendra Modi

0: भी है,
1: बिल्कुल
0: चाहे जब भी हो और जैसे भी हो, चाहे 500 रुपए से हो।
2: लिसनर्स, वी आर रेडी टू टेक योर कॉल्स ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड मैटर्स रिलेटेड विद देम, एंड द नंबर्स आर 2331-4444, 2331-0481 एंड 2371-7106।
0: हाँ, और इंतजार कर रहे हैं मुंबई से रत्नाकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग।
3: मेरा सवाल है कि मेरे पास मेरा ये एसेट्स ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का ETF फंड है और मेरा ये एसेट्स मिड कैप फंड है, तो उसमें दोनों में प्रॉफिट हो रहा है कि मेरा ये एसेट्स में ओवरऑल प्रॉफिट 135% है और मेरा ये एसेट्स मिड कैप में 39% है, तो उससे मैं बाहर आना कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा? क्योंकि वो इन्वेस्टेड वैल्यू 10,000 है, उसका 23,000 मिल रहा है, इसलिए मैं सोचता हूँ उधर से बाहर आ जाने हैं और वो फिर इन्वेस्ट करने के लिए और कौन से अच्छे फंड है उसका मुझे सुझाव दीजिए। थैंक यू
1: रत्नाकर जी। अगर ये दोनों फंड आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दे रहे हैं एंड आपकी मान लीजिए जैसे मिड कैप एलोकेशन जो आपने रखी है उसके लिए आपका मेरा ये मिड कैप फंड आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है एंड आपकी इंटरनेशनल एलोकेशन के लिए आपने मेरा ये का ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड रखा हुआ है, तो इनमें बने रहना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये एलोकेशंस और इक्विटी एज एन एसेट क्लास लॉन्ग टर्म वेल्थ अक्यूमुलेशन टूल है। इसको हमें बीच बीच में प्रॉफिट कमाने के लिए कमाने की नज़र से ना देखकर इस नज़रिए से देखना चाहिए कि लंबे समय में क्या ये आपके जो आगे आने वाले गोल्स आएंगे उनमें आपको अगर बढ़ोतरी दे रहा है, आपका हेल्प होगा इस ग्रोथ से, तो उस ग्रोथ को मैं नहीं बोलूँगी कि आप अभी निकाल लीजिए। जब तक आपको इस पैसे की ज़रूरत नहीं है आप इसमें बने रहिए। बस ये इंश्योर करिएगा कि ये मिड कैप और इंटरनेशनल एलोकेशन ही नहीं है जो आपके पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है, आपके पास फ्लेक्सी कैप जैसे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स भी हैं ताकि आपका ओवरऑल इक्विटी पोर्टफोलियो कंप्लीटेड रहे।
2: जॉइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली इज विशाल, अ वार्म वेलकम विशाल।
4: जी सर, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ ये ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, ये कब तक खत्म होने की संभावना, कोई संभावना है या नहीं?
2: दिस इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन
1: एंड द मिलियन डॉलर आंसर to that is not with me.
0: ये तो ईरान और अमेरिका ही बता सकते हैं कि वो कब समझौते पर पहुंचेंगे। इससे सबको उम्मीद है, पूरे बाजार को उम्मीद है कि शायद जल्दी ही इसका इसकी समाप्ति हो जाए।
1: विशाल जी, मैं आपको एक ये सुझाव देना चाहूंगी कि इसका आंसर ना ढूंढकर हम अगर अपने पोर्टफोलियो में एक एसेट एलोकेशन मेंटेन रखें और हम इतना इंश्योर करें कि हमारे पास एक कोर इक्विटी है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का और हमारे पास डेट के लिए फिक्स्ड इनकम के लिए एक एक्सपोजर है, इतना इंश्योर करने से और SIP को डिसिप्लिन तरीके से जारी रखने से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि चाहे वॉर हो चाहे कुछ भी हो हमारा पोर्टफोलियो आगे बढ़ता रहे।
0: जी स्नेहा, हम वापस लौटें अगर जो हमारे पहले कॉलर थे रत्नाकर जी, कि वो कुछ प्रॉफिट बुक करना चाह रहे थे और फिर उन्होंने कहीं और निवेश करने की भी बात पूछ रहे थे। एक बहुत बुनियादी सवाल है जो हम समय समय पर कार्यक्रम में दोहराते रहते हैं, श्रोताओं को भी बताते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आपको कब बेचना चाहिए, कब रिडीम करना चाहिए। आप एक बार फिर से आज अगर इसे दोहरा दें तो हमारे श्रोताओं को काफ़ी लाभ होगा।
1: बिल्कुल, तो जैसे कि मैं रत्नाकर जी को बता रही थी कि जब तक आपका गोल हिट नहीं हो रहा है, मतलब आपको इस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तब तक आप उसमें बने रहिए। बिकॉज होता क्या है, आप निकाल लेते हैं वो कंज्यूम हो जाता है। जैसे अभी रत्नाकर जी कह रहे थे मैं कहीं और लगा देता हूँ, उस कहीं और के चक्कर में अगर वो आप कोई ज़रूरत आ जाती है जो नेगोशिएबल ज़रूरत है बट आपके पास होगा पैसा तो आप उसको यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ वाई वी एंड अप कंज्यूमिंग इट। तो उसका वेट करना चाहिए कि जब तक आपको उसकी ज़रूरत ना हो। दूसरा, क्योंकि कोई भी अगर इमरजेंसी आती है, आप ये पैसा इसीलिए आपने कमा के इन्वेस्ट करा है ताकि सेविंग्स अकाउंट से आप ज़्यादा रिटर्न ले पाएँ, तो इमरजेंसी में कोई इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये स्टोर्ड है, आप इसका यूज़ कर पाएंगे। और और आखिरी में बस इतना इंश्योर कर सकते हैं कि अगर आपने जिस पर्पस के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करा था वो फंड ने अपना एक तरीके से कैरेक्टर बदल लिया है, मिड कैप आपको मिड कैप एक्सपोजर नहीं दे रहा, ऑल्दो सेबी के रेगुलेशंस काफी टाइट हैं, बट कुछ कैटेगरीज में फंड हाउसेस का स्टाइल चेंज हो जाता है, बट अगर आप उसी स्टाइल के लिए उस फंड में आए थे और वो बदल गए एंड यू आर नॉट ओके विद इट, तब भी आप निकल सकते हैं।

0: fund in your portfolio or overall debt funds which can provide you that kind of stability in your fixed income portfolio.
1: जी अगले कॉलर के पास चलें. दिल्ली से योगेश इंतजार कर रहे हैं. स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
2: जी आप सभी को नमस्कार.
1: नमस्कार.
2: मेरा सवाल यह है कि हमारा ज्यादातर इक्विटी का एलोकेशन सारा म्यूचुअल फंड के थ्रू ही आता है, और इसमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि एक्चुअल ओनरशिप तो डायरेक्ट स्टॉक्स होल्ड करने में ही आती है. अगर हम अपना सारा पोर्टफोलियो इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू रखते हैं बिना किसी स्टॉक्स के लॉन्ग टर्म में और एक बड़ा पोर्टफोलियो, इसमें कितना डिफरेंस है? क्या ये हम एएमसी पे डिपेंड हो रहे हैं या फिर ये इक्वली गुड है?
0: योगेश जी, जहां तक ओनरशिप की बात है, आप डेफिनेटली शेयर्स म्यूचुअल फंड में भी ओन कर रहे हैं, बस एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से. कंपैरिजन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स का मोस्टली इस तरीके से होना चाहिए कि आप कितना कंफर्टेबल हैं उस डायरेक्ट ओनरशिप से या फिर कुछ पर्टिकुलर स्टॉक से, जबकि म्यूचुअल फंड ऑन द अदर हैंड गेट्स यू अ बास्केट ऑफ ऑल ऑफ दीज स्टॉक्स. तो इसलिए किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के उतार चढ़ाव से आप डिपेंडेंट नहीं रहते हैं. दूसरी बात जो आपने बोली कि अगर हम एएमसी पे डिपेंडेंट है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि इसीलिए हम बोलते हैं कि एएमसी लेवल डाइवर्सिफिकेशन भी हमें रखनी चाहिए, और एक ही एएमसी के पोर्टफोलियो, एक ही एएमसी के फंड्स हम ना रखें अपने पोर्टफोलियो में. बट इसमें किसी तरीके का डर नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. फिर ऊपर से ये एक पूल्ड व्हीकल हो जाता है जो आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के साथ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ऑफर करता है.
1: जी, और अगली खबर पे चलते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है, जिसे काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है. लगभग 1700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित यह देश का पहला पीएम मित्र पार्क है. इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के 5F विजन के अंतर्गत एक एकीकृत वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है. ये 5F हैं, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन मार्केट. श्री मोदी ने कहा कि एक समय भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था. वस्त्र उद्योग भारत की विकास गाथा के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है. उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र को विस्तार के एक नए चरण के लिए तैयार किया जा रहा है.
3: वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा. पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा. उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी. इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा, खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं.
1: जी, और एक कॉलर अभी इंतजार कर रहे हैं हमारे. दिल्ली से रवि, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
4: सर, मैं 10,000 रुपये मंथली SIP चला रहा हूँ, एक साल हो गया मेरे को स्मॉल कैप में. तो मैंने इसका गोल 15 साल का रखा है, तो इसमें चक्रवर्ती ब्याज लगता है, चलता है क्या?
0: क्या चलता है?
1: ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है क्या, ये जानना चाहते हैं.
0: अच्छा रवि जी, बिल्कुल. म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं, तो आप जब SIP के माध्यम से कुछ इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो ग्रो होता है, फिर जब आप नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो इन पे बिल्डअप क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है, वो उस तरीके से कंपाउंड होता रहता है. यही एक खूबी है इक्विटी एज एन एसेट क्लास की, और तभी इसको हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं.
1: जी, और हम प्रधानमंत्री की खबर पे आगे बढ़े तो उन्होंने आज हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के अंतर्गत गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण, और संगारेड्डी ज़िले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी. प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टी ट्रैकिंग गलियारे में काजीपेट अंडर रेल बाईपास और हैदराबाद में एक नए ग्रीन फील्ड पेट्रोलियम तेल और ल्यूब्रिकेंट टर्मिनल सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को झंडी दिखाकर शुरू किया.
5: स्नेहल, व्हाट काइंड ऑफ ड्रॉडाउन्स और वॉलेटिलिटी इन म्यूचुअल फंड्स शुड इन्वेस्टर्स रियलिस्टिकली बी प्रिपेयर्ड फॉर इफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस एस्केलेट फर्दर, एंड हाउ लॉन्ग डू सच फेजेस यूजुअली

0: take to normalize historically?
1: Right. So history suggests when we talk about normalization, it differs from event to event. Let's say the situation can last for because the particular situation is such which is out of it is an uncontrollable event. Thus, the kind of volatility, the long-term impact, or the timeline is of course unpredictable. So that of course history suggests. As far as your question regarding what kind of drawdown an investor should be prepared. So a market-linked in asset class like equity, the drawdown can range from different categories and different kind of underlying stocks. So let's say a penny stock or a small cap stock, of course, will give you a lot of or massive drawdowns, even a 50%, 80% kind. Whereas a large cap stock may not give you that kind of volatility. So the best thing which remains in your control when building a portfolio is thus to have limited kind of an asset allocation or a portfolio allocation when it comes to small cap or mid cap kind of funds, whereas have more allocation to diversified funds.
0: So in such a scenario, the big question that everyone has is, should I continue with my SIP? Should I kind of increase, decrease, or pause my SIP under conditions such as the ones which we are discussing?
2: Because anishchitta se ye ghabrahat to hoti hai.
1: Bilkul. वो घबराहट जब आपके इस लेवल पे पहुंच जाए कि आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, तो बिल्कुल अब आपके पैसे आपके लिए वरी क्रिएट कर रहे हैं, ना ही द पीस और काम दैट दे शुड ऑफर. तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल आपको या तो अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए कि आप बार बार अपना पोर्टफोलियो खोल के ना देखें. वो अगर नहीं हो पाता है तो बिल्कुल आपको पॉज ले लेना चाहिए, बट आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि द वेरी रीज़न आप जिसके लिए आए होंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करने के माध्यम से, तो यहाँ पे भी एक एसेट एलोकेशन की बात आ जाती है. जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, आप अपना इक्विटी चाहें तो उस टाइम पर रिड्यूस कर लें और डेट बढ़ा दें.
2: चलिए और देखते हैं सोने और चांदी का क्या हाल रहा है. पिछले हफ्ते भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जुलाई अनुबंध के लिए चांदी वायदा इस हफ्ते लगभग 4.4% उछलकर 2,61,922 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. जून अनुबंध के लिए सोना वायदा में सप्ताह के दौरान 0.8% की बढ़त आई और यह 1,52,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. दो हफ्ते की गिरावट के बाद अब इसका रुख बदला है. इसी हफ्ते में जून वायदा का कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स 1.8% बढ़कर $4,730.70 प्रति ट्रॉय अंस पर बंद हुआ, जबकि जुलाई वायदा की चांदी 5.8% बढ़कर $80.87 प्रति ट्रॉय अंस पर आ गई. एक कॉलर इंतज़ार कर रहे हैं, चेन्नई से राजा, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
3: Good evening, ma'am. And good evening, sir. Hello.
0: Please continue.
3: Sir, I have a basic question. Like ma'am said earlier for somebody, how to book the profit in this one mutual fund when we are having 70-80% profit? How to redeem? Or cumulative means, when do they get accumulated? I mean, like a person that it should be added with the principal amount. Right? When are they doing that? Okay, I don't.
1: So, Rajaji, if I have been able to understand your question, you are wanting to know when, how to book profit.
0: When to book.
1: Okay. Hmm. So, profit booking as a concept can be very, sort of part of your portfolio. Let's say, like we were discussing, when you're not comfortable with a particular fund going to a certain level of profits, that is particularly an individual's call, although that is not something that should worry you to redeem it because you're investing to save for your future. But if you're still wanting to redeem, of course you can consider the kind of taxation limit. The long-term capital gain tax gets you exemption till 1.25 lakh. You can aim to book your profits around that point.

0: particular limit so that it can you can book your profits with tax efficiency.
1: जी, और एफपीआई की हालत यह है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को एफपीआई ने मई के पहले सप्ताह में 14,231 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे हैं. इस साल अब तक भारतीय शेयर बाजार से एफपीआई की कुल बिकवाली 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है, जो पिछले साल की उनकी कुल बिकवाली से ज्यादा है.
2: After registering gains for second consecutive week, domestic markets are likely to focus on key economic releases, corporate earnings

0: After registering gains for second consecutive week, domestic markets are likely to focus on key economic releases, corporate earnings, geopolitical developments, and foreign investors' activity for queues in the week ahead.
1: और स्नेहा मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी धन्यवाद
0: एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन Prime Minister Narendra Modi says the need of the hour is restrained use of fuel amid West Asia crisis. In bullion market, gold and silver prices log weekly gains and domestic investors to focus on economic data, corporate earnings and geopolitical developments for queues next week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री इस समय सिकंदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमिलग वेत्री कडगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व सरमा के नाम का

0: प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में एक कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वे वर्तमान में नौसेना में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 157 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. The event held at the Hyderabad International Convention Centre was attended by Telangana Governor Shiv Pratap Shukla, Chief Minister A. Revanth Reddy, Union Minister G. Kishan Reddy and other senior leaders. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is a need of the hour. He said imported petroleum products should be used only as required, which would help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सके।
1: मिस्टर मोदी said that India has emerged as one of the leading countries in solar power generation.
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: Among the major projects unveiled include PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. Built at an estimated cost of around 1,700 crore rupees, it is the country's first fully operational PM Mitra Park and is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the centre's 5F vision, spanning farm, fibre, factory, fashion and foreign markets. Union Home Minister Amit Shah today reviewed the country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Chairing a high-level meeting in New Delhi, Mr. Shah assessed the readiness of the central government agencies, reviewed early warning systems, resource deployment and inter-agency coordination to ensure zero loss of life and minimal loss of property. The minister also reviewed the progress of long-term flood mitigation measures being taken across the country, including protection of critical infrastructure projects, river management initiatives, and scientific advancements in forecasting. In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath today expanded his cabinet with 6 BJP leaders taking oath as ministers. Additionally, 2 ministers of state were elevated and assigned independent charge. Governor Anandibeen Patel administered the oath of office in secrecy at a ceremony held at Jan Bhavan in Lucknow. With the latest expansion, the strength of the Council of Ministers in the 403-member Uttar Pradesh Assembly has reached 60, the maximum permitted strength. Vice Admiral Sanjay Vatsayan has been appointed as the next Flag Officer Commanding-in-Chief of the Western Naval Command headquartered in Mumbai.

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है.
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें. इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है. बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं. उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास जताया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है. श्री मोदी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि इसने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है. इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की. तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है. राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा. नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है. असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. वाइस एडमिरल संजय वात्सायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना का कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है. यह नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं. वे वर्तमान में नौसेना में उपसेना प्रमुख रूप में कार्यरत हैं. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए. पुलिस के अनुसार ये मामला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी. और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया है. लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया. चेन्नई के लिए उर्विल पटेल ने 23 गेंद में शानदार 65 रन की पारी खेली. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है. ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 6 ओवर में 3 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं. उधर शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के

0: बेस्ड ऑन द आर्काइवल इनपुट्स ऑफ आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित कार्यक्रम स्वर धरोहर।
0: हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक तलत महमूद का जन्म 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी।
2: ये तो मुझे खुद भी याद नहीं है सही तरीके से, लेकिन बहुत ही छुटपने से, जब से मैंने होश संभाला है, कुछ लोगों ने मुझसे गाना शुरू किया कि मेरी आवाज़ अच्छी है,
3: इसमें तो कोई शक भी नहीं।
2: बस उसी वक्त से फिर मैंने गाने की कोशिश शुरू कर दी, और घर में अपने भाई बहनों के साथ, मेरे भाई बहनों की भी आवाज़ें अच्छी हैं, वैसे तो हम लोग म्यूजिकल फैमिली से तो नहीं है, लेकिन आवाज़ें सबकी इत्तेफाक से अच्छी हैं। मेरे वालिद साहब भी बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक थे, तब से ही मैंने कुछ गुनगुनाना शुरू किया। और उसके बाद जब जरा स्कूल में आया और थोड़ा होश संभाला तो सैगल साहब को सुना मैंने। सैगल साहब जैसा गाने वाला तो मेरे ख्याल में ना पैदा हुआ है ना पैदा हो सकेगा। उनका मैं बेहद मद्दा हूँ और उन्हीं की वजह से आज मैं गा बजा रहा हूँ।
0: उन्होंने पंडित SCR भट्ट से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और गजल गायन से अपने करियर की शुरुआत की।
2: उसको तालीम तो नहीं कहा जा सकता, गंडा बांध के जो एक तरीका होता है वो तो नहीं किया मैंने, लेकिन हमारे लखनऊ में बहुत मशहूर कॉलेज है, मैरिस म्यूजिक कॉलेज जिसको कहते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा,
3: भातखंडे।
2: जी हाँ, भातखंडे।
3: जी,
2: तो उसमें मैंने 3 बरस सीखा है।
1: 16 वर्ष की आयु में उन्होंने आकाशवाणी लखनऊ पर गाना शुरू किया। 1941 में हिज मास्टर्स वॉइस यानी HMV ने उनका पहला डिस्क जारी किया।
2: तो वहाँ से फिर 1941 में कुछ HMV के लोग आए थे कि जो नए आर्टिस्टों की तलाश में थे, तो हमारे यहाँ के एक ग्रामोफोन कंपनी के डीलर्स थे, उन्होंने उनको बताया था कि एक नए सिंगर यहाँ पे, कल अच्छा नाम हो रहा है उनका, उनका नाम है तलत महमूद। तो HMV वाले मुझसे मिले आकर और उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 3 गानों का। लखनऊ में पढ़ रहा था तो कुछ मुझे बताया लोगों ने कि भाई HMV से कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो खैर मैंने उनसे बातचीत की, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया और ये तय हुआ कि मैं कलकत्ते जाकर 3 रिकॉर्ड करूंगा।
3: तो उस वक्त कलकत्ता जाना क्या मजबूरी थी, कहीं और रिकॉर्डिंग नहीं होती थी?
2: जी नहीं, और कहीं नहीं हो सकती थी।
3: अच्छा अच्छा।
2: कलकत्ते में डमडम ये जगह है जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, आज भी वहीं पे हो रही है रिकॉर्डिंग, तो ये एक जमाने से चला आ रहा है वहाँ पे।
3: अच्छा अच्छा।
2: तो मैं वहाँ पे तकरीबन 1941 में शुरू में ही गया वहाँ और 3 गाने मैंने रिकॉर्ड किए। सबसे पहला जो गीत था मेरा वो उसके बोल हैं, सब दिन एक समान
3: जी,
2: वो बहुत अच्छा मकबूल हुआ।

0: आकाशवाणी से अपने जुड़ाव के विषय में बताते हुए तलत महमूद ने कहा था,
1: ऑल इंडिया रेडियो ने भी मेरी जिंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। 1947 में मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर चंद गालिब और इकबाल की गजलें पेश की थी जो बहुत पसंद की गई। तो सच पूछिए तो वैसे रेडियो ही से मैंने अपनी जिंदगी का आगाज किया है।
2: तलत महमूद लखनऊ से कलकत्ता आ गए और वहाँ उन्हें काफी सफलता मिली। उन्होंने करीब 16 फिल्मों में अभिनय किया। तपन कुमार के नाम से बांग्ला गीत भी रिकॉर्ड किए।
1: वैसे तो आप ये ख्याल कीजिए कि मैंने तकरीबन हिंदुस्तान की तमाम जुबानें गाए हैं
3: जी,
1: सिवाय तमिल के सब जुबानें गाए मैंने। बंगाली में जुबान बहुत से गाने किए
3: जी,
1: और वो बहुत ही पॉपुलर हुए, जैसे कि मेरे हिंदी गाने पॉपुलर हुए
3: जी,
1: उसी तरीके से बंगला चले।
3: अच्छा, तो बंगला गानों में नामकरण आपका कुछ और हो गया था क्या?
1: वो थोड़ा सा कुछ उन्होंने अपने उस वक्त को देखते हुए तपन कुमार मुझे नाम दिया था।
3: तपन कुमार
1: जी हाँ।
3: अच्छा अच्छा,
1: अब उसके बाद तो फिर लोगों को पता चल गया तो तपन कुमार के सामने

0: ब्रैकेट में तलत महमूद आने लगा।
1: अच्छा अच्छा
0: लेकिन शुरू में था थोड़ा सा बिजनेस ट्रिक की वजह से उन्होंने ये चीज की थी।
2: 1949 में वो कलकत्ता से मुंबई पहुंचे। संगीत निदेशक अनिल बिस्वास ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिल्म आरजू में अवसर दिया।
3: उनका गाया गीत ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल बहुत लोकप्रिय हुआ और उन्हें पहचान दिलाई।
2: अनिल बिस्वास के साथ अपने अनुभव को तलत महमूद ने इन शब्दों में व्यक्त किया।
0: 1949 में मैं कलकत्ते से बम्बई आ गया और हालांकि मेरे सभी गाने सब म्यूजिक डायरेक्टर ने सुने थे और मेरे काम और आवाज़ से वाकिफ थे, लेकिन जिसके पास भी मैं गया उन्होंने यही कहा कि भाई फिल्म का तो आपको एक्सपीरियंस है नहीं। मुझे ताज्जुब भी होता था और अफसोस भी, लेकिन इसी दौरान में अनिल बिस्वास साहब का एक पैगाम मुझे मिला कि तुम आओ, तुम्हारा गाना रिकॉर्ड करना है। मैं अनिला से मिला, पूछा कि आपने मेरे माइक्रोफोन के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ पूछा ही नहीं और सीधा गाने रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गए। तो उन्हें भाई कि तुम्हारे 300-400 रिकॉर्ड जो हैं वो क्या ये साबित नहीं करते हैं कि तुम गाने वाले हो और तुमको माइक का एक्सपीरियंस है। मैं अनिल दा का बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने पहला गाना फिल्म आरजू के लिए मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड किया।

0: तलत महमूद ने संगीत निर्देशक मदन मोहन के साथ भी अनेक गीत रिकॉर्ड किए। मदन मोहन को याद करते हुए उन्होंने कहा था,
1: मेरी मुलाकात मदन मोहन से लखनऊ में हुई और हमारी काफ़ी दोस्ती बढ़ी और ये इकरार हुआ था कि जब भी कभी मैं बॉम्बे आऊँगा तो मदन के साथ काम करूँगा। लेकिन और इतफाक से कुछ ज़्यादातर पिक्चरें उनके साथ चली और बहुत अच्छे अच्छे गाने चले उनके मदन के, और आखिर में जहाँ नारा में उनके साथ मैंने काम किया।

0: बाद उन्होंने शाम गम की कसम तस्वीर बनाता हूँ जैसे गीत गाए।
1: इन गीतों ने उन्हें रोमांटिक और करुण भावनाओं का प्रतीक बना दिया।
0: 1950 और 60 के दशक में तलत महमूद गजल गायकी के लिए पहली पहचान माने जाते थे।
2: जब मैंने शुरू किया था तो थोड़ी सी तब्दीली मैंने कोशिश की थी कि लाऊं, उसको और हल्का रंग दिया था मैंने,
3: आसान बनाया।
2: जी हाँ, मगर आजकल मैं देख रहा हूँ कि फिर वही सिलसिला शुरू हो गया कि वो अपने यानी एक एक घंटे में, दो दो घंटे में एक एक मिसरा गाया जाता है गजल का। आजकल फिर वही सिलसिला शुरू हो गया और मेरे ख्याल में पता नहीं इसका खत्म कहाँ होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।
3: तो यानी गजल में आप ये तान और अलाप है इसका इस्तेमाल जो है वो जायज नहीं समझते?
2: नहीं, एक हद तक जायज है, जहाँ तक के अशार को नुकसान न पहुंचे, उसके मीटर को, बहर को नुकसान न पहुंचे और अल्फाज खराब ना हो। अल्फाज तक खराब कर देते हैं लोग आजकल, मुश्किल है ना। एक मिसरा आपको आधे घंटे में सुनाया जाए तो आप क्या समझें कि उसके बाद दूसरा मिसरा भी उसी आधे घंटे में, तो बेचारा शायर भी बेकार, इतनी उसने मेहनत की और सुनने वाला तो परेशान है कि क्या कह रहे हैं और क्या शायर ने क्या कहा, तो ये तो परेशानी हो जाती है।
0: मोहम्मद रफी और किशोर के साथ वो फिल्मी पार्श्व गायन में छाए हुए थे। उन्होंने 1940 से 1980 के बीच 800 से अधिक गीत गाए।

0: श्रोताओ, एक प्रसंग ये भी है कि जब मुकेश आर्थिक संकट में थे तब तलत महमूद ने उन्हें मधुमति फिल्म के गीत को गाने का अवसर दिया।
1: ये उनकी उदारता और सहृदयता का उदाहरण है।
2: मैं अपने बहुत अजीज दोस्त मुकेश के बारे में चंद बातें आपको सुनाऊं। हम दोस्त होने के साथ साथ हमराज भी थे और ख़ास तौर से प्लेबैक सिंगर्स एसोसिएशन की वजह से हम दोनों में बहुत कुर्बत हो गई थी, क्योंकि हमारे साथ तमाम इंडस्ट्री के मसाइल थे। उनका हल ढूंढना, फंड वगैरह जमा करना, मेंबर्स बनाना, प्रोड्यूसरों से झगड़े करना, उनके झगड़ों को तय करना, गरज के हज़ार बलाएँ थी हमारे सर पर। मगर साहब कमाल है, मुकेश जैसा खुश अखलाक और हंसमुख दोस्त चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। कभी उसने अपना टेंपर लूज नहीं किया, बल्कि हमेशा मुझको समझाया करता था कि भाई ये चीज़ें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। उसका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे ख्याल में किताब लिख सकता हूँ।
3: तलत महमूद सबसे अधिक प्रभावित थे गायक कुंदन लाल सहगल से।
2: एक तो उनके गाने की सॉफ्टनेस, दूसरे उनके जज्बात, जो पैथोस और अल्फाज की अदायगी, ये सब चीज़ें। अब आप देखिए उनके जो पुराने गाने हैं, सोजा राजकुमारी सोजा, या ये कि काह करूं कि जाऊं, इस किस्म के जो गाने हैं उससे मालूम था जैसे कि वाकई दिल निकाल के रख दिया है उन्होंने। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी और बचपन में ही उनका मैं बहुत ही शौक से गाना सुनता था।
4: मेरा कॉन्ट्रैक्ट न्यू थिएटर्स में था 1945-46 में। मेरी मुलाकात सहगल साहब के साथ हुई और वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा दिन है कि जिसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि सहगल साहब से मिलूं। उनके गाने जब भी सुनता था मैं तो एक अजीब किस्म का असर मेरे पर होता था, क्योंकि मैं ये अभी तक ऐसा महसूस करता हूँ कि सहगल साहब गाते नहीं थे बल्कि फरिश्तों के तरीके से कुछ ख़ास उनको अल्लाह ने एक सिफत दी थी, उनके गले में एक नूर दिया था कि जो आपको मोह लिया करता था। और जब मैं न्यू थिएटर्स में काम करना शुरू किया है तो उनकी पिक्चर माई सिस्टर बन रही थी। मुझे ख्याल भी नहीं था कि ज़िंदगी में उनसे इतनी कुर्बत हो जाएगी और एक साथ इतना वक्त गुजार सकूँगा। माई सिस्टर फिल्म का ये गाना मेरी मौजूदगी में ही रिकॉर्ड हुआ था, दो नैना मतवारे तिहारे, और रिकॉर्डिंग के वक्त जो समा था वो मैं अल्फाज में तो नहीं बयान कर सकता हूँ।
1: तलत महमूद ने मदन मोहन, एस डी बर्मन, शंकर जयकिशन और नौशाद जैसे संगीतकारों के साथ काम किया।
0: उनकी आवाज में प्राकृतिक वाइब्रेटो था जो श्रोताओं को तुरंत बांध लेता था।
1: लता मंगेशकर के साथ उनके युगल गीत बेहद लोकप्रिय हुए। उन्होंने सुरैया, नूतन, माला सिन्हा और श्यामा जैसी अभिनेत्रियों के साथ अभिनय भी किया।
0: दिले नादा, सोने की चिड़िया और मिर्जा गालिब जैसी फिल्मों में वे नजर आए।
1: हालांकि अभिनय में वो उतने सफल नहीं रहे, पर उनकी गायकी ने उन्हें अमर बना दिया।
2: और अदाकारी से मुझे सख्त नफरत रही हमेशा।
5: अच्छा।
2: हालांकि मैंने काफी पिक्चर में काम किया है
5: जी।
2: अब बेहद कैमरा कॉन्शियस किस्म का आर्टिस्ट था मैं। या आप देखिए जो पिक्चर है मेरी कभी रिलीज हो तो मुझे सख्त तरीन नफरत रही।
5: नहीं, आपको तो साहब रही होगी लेकिन हमें तो देख कैसा नहीं लगा।
2: नहीं, मैं आपको, आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस किस्म का आदमी हूँ। तो वहाँ भी मैं गानी चाहता था और यहाँ भी गानी चाहता था, लेकिन बीच में मुझे पकड़ कर ढकेल दिया दिल नादान और एक गाँव की कहानी वगैरह वगैरह में
5: जी,
2: तो मजबूरन करना पड़ा, वरना हमेशा से मैं गानी ही चाहता था।
0: श्रोताओ, वे पहले भारतीय गायक थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुति दी, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में और अमेरिका के ब्रॉडवे में।
1: 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
0: उनकी जीवनी तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी 28 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित हुई, जिसने उनकी शताब्दी वर्षगांठ पर नई पीढ़ी को उनसे जोड़ा।
1: श्रोताओ, उन्होंने 1980 के दशक तक गाना जारी रखा।
0: 9 मई 1998 को मुंबई में 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
1: उनकी बेटी सबीना और परिवार आज भी उनकी विरासत को संजोए हुए हैं।
0: आज भी उनके गीत रेडियो और मंचों पर गाए जाते हैं और वे भारतीय संगीत इतिहास के अमर नक्षत्र हैं। तो श्रोताओ, अब मैं आशुतोष
1: और मैं श्वेता आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।
0: कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी में वाचन स्वर था श्वेता और आशुतोष का, आलेख था दीपा कुमारी का, तकनीकी सहयोग दिया था आकाश ने।
1: कार्यक्रम के निर्माता थे आशु

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का नियमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
2: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ

0: लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन्द्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा

0: विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत

और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that Centre will continue to work with greater speed to realize your dreams.
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, it is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the centre's 5F vision, spanning farm, fibre, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.
3: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ

0: सरिता हम सबको संस्कारित करती है, प्रेरित करती है, ऊर्जावान बनाती है.
1: द प्राइम मिनिस्टर नोटेड दैट इंडियाज ग्रोथ, particularly in the fields of technology, innovation and startups, is driven by its youth. He stressed the importance of helping youth find mental peace, staying connected with to their roots and develop a sense of social responsibility.
0: आज की दुनिया में बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं. हर दिन साइंस नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है. नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं. भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है. हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है. आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है. स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है. हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं. देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है.
1: The Prime Minister also called for collective efforts in natural farming, water conservation and environmental stewardship. He linked these efforts to the government's broader Mission Life initiative, which promotes a lifestyle in balance with nature.
0: भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है. इनमें आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं. आप में से बहुत से लोग किसानों और ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़कर काम करते हैं.
1: द प्राइम मिनिस्टर इन रीसेंट ईयर्स हैज रिपीटेडली लिंक्ड वेलनेस एंड प्रिवेंटेटिव हेल्थ केयर विद नेशनल प्रोडक्टिविटी, मेंटल हेल्थ एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. Officials say institutions promoting meditation, yoga and stress management are now being viewed as complementary to formal healthcare systems. Bengaluru itself has become an important center for this wellness ecosystem, blending technology, education and spiritual tourism. Over the past several years, India's healthcare strategy has increasingly focused on strengthening district hospitals, expanding medical education, and improving access to affordable treatment through schemes such as Ayushman Bharat. Telangana has emerged as one of India's healthcare and pharmaceutical hubs, attracting patients not only from neighboring states but also from abroad. The Prime Minister laid the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 between Gudebellur and Mehboobnagar. The highway forms part of the larger Hyderabad-Panaji economic corridor and is expected to improve connectivity between Telangana, Karnataka and Goa. Road infrastructure has been one of the central themes of India's developmental push over the past decade. Under programs such as Bharatmala and PM Gati Shakti, the government has sought to integrate highways, ports, rail corridors, logistics parks and industrial clusters into a unified transport network. The Prime Minister noted that over the past 12 years, the government has invested nearly 1.75 lakh crores in national highways, doubling the network in Telangana. Let's listen to what he said.
0: बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है. रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है. करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है और इसका बहुत बड़ा लाभ तेलंगाना को भी हो रहा है.
1: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हाईलाइटेड द डेवलपमेंट ऑफ द जाहिराबाद इंडस्ट्रियल एरिया एज पार्ट ऑफ द नेशनल इनिशिएटिव टू बिल्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एमिंग टू ट्रांसफॉर्म द रीजन इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांस्ड आईसीटी नेटवर्क्स. लेट्स लिसन टू व्हाट ही सेड.
0: जहीराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है. यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है. यहाँ वर्ल्ड क्लास

0: Funny Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट भी प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की आवश्यकता है।
2: जो एनर्जी

0: प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट भी प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की आवश्यकता है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा ही डबल इंजन सरकार की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने छठे ओवर में 3 विकेट पर 39 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंदों में 65 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत शामिल थी। सेमीफाइनल में इस भारतीय टिकड़ी ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया था। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्वकप में नीरू डांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुरक्षाकर्मी मारे गए और हंता वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज से निकाले गए स्पेनिश नागरिकों सहित यात्रियों का पहला जत्था मैड्रिड पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरेबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा सम्पन्न हुई। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की और पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री प्रसाद विशेषर की उपस्थिति में डॉक्टर जयशंकर ने चयनित स्कूली बच्चों को 2000 लैपटॉप का पहला बैच सौंपा और एक कृषि प्रसंस्करण सुविधा का उद्घाटन किया। भारत ने इसके लिए पिछले वर्ष $10,00,000 की मशीनरी उपलब्ध कराई थी। सुश्री प्रसाद विशेषर और डॉक्टर जयशंकर ने पैनाल में त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रीय कृत्रिम अंग केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने केप टाउन स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी में आयोजित एक समारोह में दक्षिण अफ्रीकी खगोलीय वेधशाला SAAO को भारत के अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र IUCAA का ध्वज औपचारिक रूप से सौंप दिया। ये दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे वैज्ञानिक सहयोग को और मजबूत करने का परिचायक है। भारतीय राजदूत ने इस सप्ताह के प्रारंभ में आयोजित समारोह में SAAO के अनुकरणीय अनुसंधान की सराहना की और कहा कि IUCAA ध्वज की स्थापना वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को भारत सरकार की प्राथमिकता का प्रतीक है। पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के नवीनतम प्रस्ताव पर ईरान ने औपचारिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। प्रस्ताव में क्षेत्र में संघर्ष समाप्त करने पर अधिक बल दिया गया है। इस संबंध में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। इसमें संघर्ष के तीसरे महीने में प्रवेश करने के साथ ही गहन राजनयिक प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। इस बीच ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच युद्ध में संघर्ष विराम पर आज कई खाड़ी देशों के ड्रोन हमलों की सूचना के बाद दबाव बढ़ता जा रहा है। कतर के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि अबू धाबी से दक्षिणी बंदरगाह की ओर आ रहे एक मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमला हुआ जिससे आग लग गई। वहीं कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ने ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायुसेना ने ईरान से आ रहे 2 ड्रोन को मार गिराया। ये तेल समृद्ध खाड़ी देश पर हो रहे नए हमलों की कड़ी में ताजी घटना है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि आज सुबह ड्रोन कुवैत के हवाई क्षेत्र में घुस आए थे और सेना ने जवाबी कार्रवाई की। रूस ने यूक्रेन पर अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। वहीं यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में रूस के हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने 1000 से अधिक बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जिनमें नागरिक क्षेत्रों और अग्रिम मोर्चों पर हमले शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेनाओं ने यूक्रेन के कथित ड्रोन और तोपखाने से हुए हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने आज सनातनी जागरण जोट के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की एक वकील की कथित हत्या के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने 4 अन्य जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला कल तक के

0: सुरक्षित रखा है। इस्कॉन के पूर्व नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को नवंबर 2024 में ढाका हवाई अड्डे से राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर चट्टोग्राम में एक रैली के दौरान कथित रूप से राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में टेनरिफ तट पर खड़े हंता वायरस से प्रभावित क्रूज से निकाले गए यात्रियों का पहला जत्था मैड्रिड पहुंच गया है। स्पेन के 14 नागरिकों वाले पहले जत्थे को चार्टर्ड विमान से लाया गया है और अब उन्हें एक सैन्य अस्पताल में अनिवार्य क्वारंटाइन में रखा जाएगा। यात्रियों को उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर निकाला जा रहा है। दूसरे समूह में फ्रांस के नागरिक हैं। स्पेन के अधिकारियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन और क्रूज कंपनी ओशन वाइड एक्सपीडिशन ने कहा कि इस जहाज के 140 से अधिक लोगों में से किसी में भी वायरस के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। स्पेन के अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि सभी को कल तक निकालने का लक्ष्य है। ये क्रूज 6 मई को पश्चिमी अफ्रीकी तट पर स्थित द्वीप समूह देश केप वर्डे से रवाना हुआ था। वायरस के प्रकोप से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और जहाज से उतरे 5 यात्री हंता वायरस से संक्रमित हैं। चौथी भारत अफ्रीका फोरम शिखर बैठक 31 मई को नई दिल्ली में होगी। इसमें अफ्रीका के कई राष्ट्र प्रमुख और शासनाध्यक्ष भाग लेंगे। बैठक से पहले 28 मई को वरिष्ठ अधिकारियों और 29 मई को विदेश मंत्रियों की बैठकें होंगी। एक रिपोर्ट।
1: आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था और व्यापार, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, अंतरिक्ष और उच्च प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। शिखर सम्मेलन के समापन पर सहयोग के एजेंडे से संबंधित एक घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के दृष्टिकोण को अफ्रीका के एजेंडे 2063 के साथ जोड़ना है। शिखर सम्मेलन के साथ साथ विचार विमर्श सत्र और एक भारत अफ्रीका फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के बाद 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन होगा। पिछले एक दशक में भारत ने पूरे महाद्वीप में अपनी राजनयिक और राजनीतिक उपस्थिति का उल्लेखनीय विस्तार किया है। इस दौरान भारत के अधिकारियों और नेताओं ने अफ्रीकी देशों की लगभग 50 उच्च स्तरीय यात्राएं की हैं और अफ्रीका के नेताओं ने भारत की लगभग 100 यात्राएं की हैं। भारत ने 2018 से अफ्रीका में 17 नए राजनयिक मिशन खोले हैं जिससे इसकी उपस्थिति 46 देशों तक पहुंच गई है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। गुजरात के गांधीनगर में कल से एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। भारत 44 वर्षों में पहली बार एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: चैंपियनशिप के लिए 28 देशों के लगभग 180 एथलीटों ने पंजीकरण कराया है। यह प्रतियोगिता आगामी राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए योग्यता मार्ग में योगदान देने के कारण महत्वपूर्ण है। ओलंपिक और विश्व चैंपियनों से सजी स्टार खिलाड़ियों की सूची में कई ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में चीन 31 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर था। इस आयोजन में उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान के दल भी हिस्सा लेंगे, जबकि भारत, चीन और श्रीलंका चैंपियनशिप में 16-16 भारोत्तोलकों के साथ सबसे बड़ी टीम उतारेगा। भारत को घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारतीय टीम में राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता विंध्या रानी देवी और अजीत नारायण, निरुपमा देवी, लवप्रीत सिंह, वेदा बरात भराली जैसे बड़े भारोत्तोलक शामिल हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ईरान ने पश्चिम एशिया युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका की युद्ध विराम प्रस्ताव का जवाब दिया। और हंता वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज से निकाले गए स्पेनिश नागरिकों सहित यात्रियों का पहला जत्था मैड्रिड पहुंचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Please stay tuned in for the news in Hindi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर

0: सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट

0: जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
0: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही

0: उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
0: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही

0: इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व और निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस के 167 रन के लक्ष्य का बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत

0: वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा

है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुचि पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस के 167 रन के लक्ष्य को बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, समय हुआ है 1:11 और 12 सेकंड। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम है गीत सुहाने। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சிகள் இதுவரை. இதயத்தில் நீ, நெஞ்சம் மறப்பதில்லை, கொஞ்சம் குமரி, தாயின் மடியில் ஆகிய படங்களில் இருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत

जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसे ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू

राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: கேட்ட நிகழ்ச்சி நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் தொடரும். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए

एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुचि पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द

डीएम के विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। गुजरात और राजस्थान में आज लू चलने के अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की भी आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: அஸ்வினி பிதே அவர்களின் பாடலோடு நிறைவு பெற்றது இனிய ராகம். சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण की केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते के प्रयासों के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नवीनतम शांति प्रस्ताव को अस्वीकार्य कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं पसंद नहीं आई हैं। इससे पहले ईरान ने कहा कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के नवीनतम प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। ये प्रतिक्रिया पाकिस्तान के माध्यम से भेजी गई, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्य

की भूमिका निभा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने नहीं समझा जाना चाहिए। रूस के राजदूत सरगेई नेचायेव ने कहा है कि रूस नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच को लेकर चल रही चर्चाएं महाद्वीप के रणनीतिक संतुलन को बदल सकती है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास स्थित एक क्रूज जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को निकासी के लिए जहाज से उतारना शुरू कर दिया गया। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत आइसोलेशन में रखा जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले

0: சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் தொடரும். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण ही भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की श्रेणी शीर्ष में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। आशा है कि नया मंत्रिमंडल भाजपा के चुनावी वायदों पर चर्चा करेगा। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों के भी बैठकों में शामिल होने की संभावना है। मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 18वें सत्र के नव निर्वाचित सदस्य बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को शपथ ग्रहण करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता तापस रॉय कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपट

0: के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। स्पेन के मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि हतावायरस से प्रभावित क्रूज जहाज पर सवार दो भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनसे वायरस के कोई लक्षण नहीं हैं। स्पेन के राष्ट्रीय आपातकालीन निगरानी और समन्वय केंद्र ने कहा है कि चालक दल के सदस्य के रूप में काम कर रहे दोनों भारतीयों को नीदरलैंड ले जाया जाएगा, जहाँ उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi will participate today in Somnath Amrit Parv.